एक्स का एफ एम कवा नेखेरे के मा जो है थमो के बुंगा के इविजे से के कुमिसेल ना बोले क्या को कम अते जी के मेट गनी कुन अते जी के क्विंग अते जी के मुले जो हम का के दी 5 डे के अक्टूबर 27 सेस एन 20 दा हम को छुआ के ओले ngwa हम को सागु से गंग को का के मुकुसे के कवा सुमन चुंग मुकुचुंग वे का के मंडा खा दा सागु से गंग को का के ओले ngwa तन चोंग के मा जो है थमो के बुंगा के यु से से कुम से ngwa ले का को कम अते जी के मेट गनी कुन अते जी के क्विंग अते जी के मुले जो हम का हे तन को छु आउ ngwa ओले ngwa हम को सा कवि से गंग को का के रधु कुसे के ओले हम को ना दे का वा खसुन ओला अते के टिनिर टिनिर मा गंग वा क्रेम के सेफ्टी अते को दंग को दे का वा को community ke drag maula wo chige mtan chong ba wala ngwa ngu sa ka wisi ka ngwa ka ka ma jwa e ka mo ko bunga ke mtu tu ko ngwa wala ngwa hang ku sa ka wisi ka ngwa ka ka ma jwa e ka mo ko bunga o sing ngai ke ya jwa e ya sik ma ngwa ko la ngwa wa jetman style of manual ati ke ngwa ko si awa 12 very